0: পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে নদী বা সমুদ্রে যারা মাছ ধরতে যান তাদের উদ্দেশ্যে কোনো সতর্কবার্তা নেই বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে। আকাশবাণী কলকাতা শুনছেন গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গের অনুষ্ঠান। একটু পরে সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে সংবাদ, গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গের ঘোষণা কিছুক্ষণের মধ্যেই।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलरमरो मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France today on a 2-day visit to participate in the G7 summit in the third leg of his 2-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Mr. Modi will then participate in a working session of the summit on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries, and representatives of the World Bank and the African Development Bank. On the sidelines of the meeting, the Prime Minister is also scheduled to hold bilateral meetings with the Prime Minister of Canada, Mark Carney, Prime Minister of United Kingdom, Keir Starmer, and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later, he will attend a gala dinner hosted by French President Emmanuel Macron. Prime Minister Narendra Modi is visiting the French city at the invitation of French President Emmanuel Macron in what is expected to be a highly productive and wide-ranging visit. Notably, this marks India's 13th participation at the G7 summit and the Prime Minister's 7th consecutive participation. India's regular participation at the G7 summit reflects the increasing recognition of New Delhi's role and contributions in addressing global challenges related to peace, security, development and environmental sustainability. A report.
4: India's strategic importance for the G7 is increasingly being reflected in concrete economic and technology partnerships. This is evident from the recently concluded India-EU trade agreement as well as initiatives such as Bharat Innovates in Nice and India's role as the official AI partner country at upcoming VivaTech in Paris. These developments underline how G7 countries are looking at India not only as a major market but also as a trusted partner in technology, innovation, manufacturing and resilient supply chains. Significantly, many of the priorities identified by the French G7 presidency, including reducing imbalance, international partnerships and artificial intelligence, closely align with India's strengths and interests. Ankit Kumar, Akashwani News, Evian, France.
3: Earlier yesterday, India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also linked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Addressing a joint press conference, Mr. Modi said, elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future.
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
3: President of Slovakia, Peter Pellegrini, has conferred Slovakia's highest state honor, the Order of the White Double Cross First

राजा दशरथ ने कैकेयी को कई प्रकार से समझाया, अनुनय विनय की कि वो विवेक से सोच समझकर दूसरा वर मांगे, क्योंकि राम के बिना उनका जीवन नहीं रह पाएगा। किंतु राजा के कोमल वचन कैकेयी की क्रोधाग्नि में मात्र आहुति का काम कर रहे हैं। रानी की एक ही देख है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहां आपकी माया नहीं चलेगी। या तो जो वर मैंने मांगा है वो दे, नहीं तो ना ही करके अपयश के भागी बने। सवेरा होते ही यदि राम मुनिवेश धारण करके वन को नहीं जाते तो हे राजन, निश्चय जानिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। इतना कहकर कैकेयी ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे क्रोध की नदी उमड़ी हो। दो वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का हठ उस नदी की तीव्र धारा है, मंथरा की प्रेरणा भंवर है, और क्रोध रूपी वो नदी राजा दशरथ को मूल रूप से ढहाती हुई विपत्ति के समुद्र की ओर ले चली है। राजा ने समझ लिया कि स्त्री के रूप में मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है। उन्होंने कैकेयी के चरण पकड़कर विनती की कि वो सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी न बने, वो उनका मस्तक मांग ले जो वो शीघ्र दे देंगे, राम के विरह में उन्हें न मारें। किंतु राजा की गुहार व्यर्थ हुई। उन्होंने जान लिया कि रोग असाध्य है। अत्यंत आर्तवाणी से हा राम कहकर वो पृथ्वी पर गिर पड़े।

0: ভক্তিগীতি শুনলেন শিল্পী সোমা সেন, আকাশবাণী কলকাতা। অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে। এখন দিল্লি কেন্দ্রের সংবাদ সংস্কৃত, হিন্দি এবং ইংরেজিতে।
1: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তা শ্রূয়ন্তাম প্রবাচক পুনীত ত্রিপাঠী। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः सम्बन्धः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्य अनन्तरं श्रम, प्रवास, डिजिटल, तंत्रज्ञान, रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र एकादश सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बन्धानां उन्नतिः सह विश्वासानां, प्राथमिकतानां, भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीय राष्ट्रस्य प्रथमायां यात्रायां श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ।
2: एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्री के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन स्लोवाकिया देशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीय सम्मानं द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय, नागरिकेभ्यश्च विशिष्ट सम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीये चरणे G7 शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं सम्प्राप्ष्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन औपचारिकरूपेण तस्य स्वागतं क्रियते। द्विपञ्चाशत्तमं G7 शिखर सम्मेलनं ह्यः एवियन नगरे समारब्धम्, यत्र विश्वस्य प्रमुखानां अर्थव्यवस्थानां नेतारः प्रमुखेषु वैश्विक समाह्वानेषु विचार विनिमयं कुर्वन्ति। राष्ट्रपतिः मैक्रों वर्यः प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय समाह्वानान् निवारणाय संयुक्तरूपेण कार्याचरणस्य विषये कार्यरात्रिभोजस्य आयोजनम् अकरोत्। ततः पूर्वं सः अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प, यूके देशस्य प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यादिभिः नेतृभिः सह G7 देशानां नेतृणाम् औपचारिकरूपेण स्वागतं विहितवान्। यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला फोन डेर लेयेन, यूरोपीय परिषदः अध्यक्षः एंटोनियो कोस्टा च शिखर सम्मेलने भागं भजन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः ह्यः फ्रांस देशे मोनाको देशस्य राज्यमन्त्रिणा क्रिस्टोफ मिरमेंड, विदेश कार्य सहकार मन्त्रिणा इजाबेल बेरो आमादेई, वित्त अर्थव्यवस्था मन्त्रिणा फेडरिक कोटालोर्डा इत्येतैः सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीगोयलः अवदत् यत् द्वैपाक्षिकव्यापारं सुदृढं कर्तुं नूतनान् निवेशावसरान् अन्वेष्टुं भारत मोनाको देशयोः मध्ये उपवेशनम् आर्थिक सहकारं सुदृढं कर्तुं च केन्द्रितम् आसीत्। संघलोक सेवा आयोगेन UPSC इत्यनेन अस्य वर्षस्य लोकसेवा प्राथमिक परीक्षायाः परिणामाः घोषिताः। UPSC ह्यः सूचितवान् यत् अस्मिन् वर्षे 1,000+ रिक्तस्थानेषु

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एविया पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री माकानी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय पर रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रभाव को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। केंद्र ने NEET UG पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने NEET UG पुनः परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के संबंध में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष के सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजेहना ने शानदार खेल दिखा

और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। कार्बो काडो करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही

0: रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दी की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक हाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
3: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
4: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
5: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
4: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
3: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
6: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
3: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना कर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति इस समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का

0: इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया, अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मानसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा, टेकनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के व्यों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे, to also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and

उसके प्रेम की और सुनेंगे कुछ ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ जो हमें रिश्तों की असली ताकत का एहसास कराएंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की रस भरी प्रस्तुति, परिवार प्रेम एवं कहानी प्रस्तुति।

बल्कि जीवन जीने की दिशा भी देता है। परिवार चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका महत्व समान रहता है। जब हम खुश होते हैं तो परिवार हमारी खुशी बढ़ाता है, और जब कठिनाई आती है तो वही सबसे पहले हमारा सहारा बनता है। और आज के समय में तकनीक और व्यस्त जीवन शैली के कारण परिवार के सदस्यों के बीच संवाद कम होता जा रहा है। ऐसे में परिवार के साथ समय बिताना और एक दूसरे की भावनाओं को समझना पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है।

दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और परिवार उसकी पहली पाठशाला। यही हम प्रेम, सम्मान, सहयोग, अनुशासन और संस्कार सीखते हैं। परिवार हमें केवल जन्म ही नहीं देता।

चलिए दोस्तों, परिवार के प्रति प्रेम को दर्शाते हुए कहानी की ओर रुख करते हैं। तो कहानी इस प्रकार है कि एक गांव में रवि नाम का एक युवक रहता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह नौकरी के लिए शहर चला गया। नौकरी की व्यस्तता में वो अपनी माँ को समय नहीं दे पाता था और माँ हर शाम उसके फोन का इंतजार करती। कई बार फोन नहीं आता, फिर भी वो अगले दिन उम्मीद लगाए बैठी रहती। एक दिन रवि को पता चला कि उसकी माँ बीमार है। वो तुरंत गांव पहुंचा। माँ ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मुझे बीमारी की चिंता नहीं थी, बस तुम्हारी आवाज़ सुनने की इच्छा रहती थी। ये सुनकर रवि की आंखें भर आई। उसने महसूस किया कि जीवन में सफलता जितनी ज़रूरी है, उतनी ही ज़रूरी अपनों के लिए समय निकालना भी है। और इस घटना के बाद उसने तय किया कि चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, वो परिवार के लिए समय अवश्य निकालेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि परिवार को केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि समय और भावनात्मक सहयोग भी चाहिए।

0: परिवार में प्रेम का अर्थ केवल स्नेह नहीं बल्कि एक दूसरे का सम्मान करना, कठिन समय में साथ देना और खुशियों को साझा करना भी है। बच्चों के लिए माता पिता का प्रेम आत्मविश्वास का आधार बनता है, वहीं बुजुर्गों के लिए परिवार का साथ जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है। प्रेम और संवाद से परिवार मजबूत बनता है। छोटी छोटी बातों पर नाराज होने के बजाय यदि हम एक दूसरे को समझने का प्रयास करें तो रिश्ते और भी मधुर हो सकते हैं।
1: चिक चिक बम बम बम चिक चिक बम।

तो दोस्तों, आज के दौर में जीवन तेजी से बदल रहा है। काम, पढ़ाई और तकनीक के कारण परिवार के साथ बिताया जाने वाला समय कम हो गया है। लेकिन यह याद रखना आवश्यक है कि परिवार केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार है, क्योंकि कुछ छोटे प्रयास रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। जैसे कि प्रतिदिन कुछ समय परिवार के साथ बिताना, बुजुर्गों का सम्मान करना, बच्चों की बात ध्यान से सुनना, भोजन के समय साथ बैठना और विशेष अवसरों को मिलकर मनाना। ये जो छोटी छोटी आदतें हैं, परिवार में प्रेम और विश्वास को बढ़ाती हैं।

तो दोस्तों, परिवार हमारे जीवन की वह नींव है जिस पर हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। प्रेम, विश्वास, सम्मान और सहयोग, ये चार स्तंभ किसी भी परिवार को मजबूत बनाते हैं। रिश्तों की मिठास बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे को समय दें, समझें और सम्मान करें। जीवन की सबसे बड़ी दौलत धन नहीं बल्कि अपने लोगों का साथ है। तो दोस्तों, इसी सुंदर संदेश के साथ आज के कार्यक्रम रसधारा में परिवार प्रेम एवं कहानी प्रस्तुति विषय पर हमारी ये विशेष प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। आशा है कि आज की बातें और गीत आपको पसंद आए होंगे और आपके मन में परिवार के प्रति प्रेम और सम्मान को और मजबूत करेंगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए अनुमति और आप अपने परिवार के साथ खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर, और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी। और दोस्तों, जाते जाते आप सभी के लिए ऋचा शर्मा की आवाज़ में एक मधुर तराना छोड़े जाती हूँ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की यह 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है।

0: बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक एआई साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। यह वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया के निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देते हुए इस पुनर्परीक्षा के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुख और समृद्धि के दरवाजे धैर्य, विवेक और दूरदर्शिता से किए गए कार्यों से ही खुलते हैं। संस्कृत का श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक निर्णय में पूर्ण विवेक आवश्यक है, क्योंकि सोच समझकर उठाया गया कदम सफलता की नींव बनता है। उन्होंने कहा कि बिना विचार किए गए जल्दबाजी में कोई निर्णय या कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे घोर विपत्तियां आ सकती हैं। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक निर्णय में विवेक का प्रयोग करने पर बल दिया। फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलपीकर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट के त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France today on a 2-day visit to participate in the G7 summit in the third leg of his 2-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Mr. Modi will then participate in a working session of the summit on the theme, Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with the leaders of G7 countries, partner countries and representatives of the World Bank and the African Development Bank. On the sidelines of the meeting, the Prime Minister is also scheduled to hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada, Mark Carney, Prime Minister of United Kingdom, Keir Starmer, and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later, he will attend a gala dinner hosted by French President Emmanuel Macron. India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation

मीडियम वेव 97.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी कोलकाता का संचार चैनल है। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 10:16 और 15 सेकंड हो रहे हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैनल संचेता पर आपका पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम अंजुमन, और मैं हूं आपकी रूबरू, आपकी हर दिल अजीज दोस्त शाइस्ता नाज। आप सभी सामीन को मेरा प्यार भरा आदाब। सामीन, सबसे पहले पेश है आईना। आईना में आज आप समात फरमाएंगे शहरयार की यौम पैदाइश और इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस पर गुफ्तगू। सबसे पहले पेश है शहरयार की यौम पैदाइश। उर्दू अदब की एक ऐसी दरख्शां शख्सियत है जिन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मोहब्बत, तन्हाई, ख्वाब, उम्मीद और इंसानी एहसास को नई

मानवीयता की हम बात कर रहे हैं मारूफ शायर शहरयार की, जिनकी यौम पैदाइश 16 जून 1936 को मनाई जाती है। सामीन, शहरयार का असल नाम अखलाक अहमद मोहम्मद खां था, लेकिन अदबी दुनिया में वो शहरयार के नाम से मशहूर हुए। उनकी पैदाइश उत्तर प्रदेश के ज़िला बरेली के आंवला कस्बे में हुई थी। बाद में उन्होंने तालीमी और अदबी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अलीगढ़ में गुजारा, जहां वो तदरीस और तहकीक से भरी वाबस्ता रहे। उन्होंने उर्दू शायरी में एक मुनफरिद असलूब अख्तियार किया। उनकी गज़लों में जदीद इंसान की है चीन ख्वाबों की शिकस्त व रिख्त, मोहब्बत की लताफत और ज़िंदगी की पेचीदगियाँ नहायत खूबसूरत से जलवा गर होती हैं। उनकी शायरी सादगी और गहराई का हसीन इम्तिज़ाज है। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, और उन आँखों की मस्ती के मतवाले हज़ारों अस्ताने हज़ारों हैं। ये वो लाजवाल अशार हैं जो फिल्मी नगमों की सूरत में भी बेहद मकबूल हुए। शायर ने फिल्मी दुनिया के लिए भी यादगार गीत तख्लीक किए। ख़ास तौर पर फिल्म अमराव जान के नगमों ने उन्हें अवामी सतह पर गैर मामूली शोहरत अदा की। दोस्तों, शहरयार की अदबी खदमात के तराफ में उन्हें मुतअद्दिद एज़ाज़ात से नवाजा गया। उर्दू ज़बान अदब के फ़रोग़ में उनकी गिरां कदर खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्हें हिंदुस्तान के आला अदबी एज़ाज़ ज्ञानपीठ अवार्ड से भी सरफराज किया गया था, जो उनकी अदबी अजमत का वाज़ह सबूत है। शहरयार की शायरी इंसान को सोचने पर मजबूर करती है। वो ज़िंदगी के आम तजुर्बात को ऐसे अंदाज में बयां करते हैं कि क़ारी या सामे खुद को इन अशार में शामिल महसूस करता है। यही वजह है कि उनका कलाम आज भी अदब दोस्त हलकों में यकसां मकबूल है। दोस्तों, आज हम उनकी यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं, और अब पेश है बैनुल अक़वामी यौम तरसीलात यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस पर गुफ्तगू। हर साल 16 जून को पूरी दुनिया में बैनुल अक़वामी यौम ख़ानदानी तरसीलात ज़र मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद उन लाखों मेहनतकश अफराद की खिदमात को खराज तहसीन पेश करना है, जो अपने वतन से दूर रहकर मेहनत करते हैं और अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने ख़ानदानों को भेजते हैं। सामीन, तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंस वो रकम है जो बैरून मुल्क काम करने वाले अफराद अपने अहले खाना की ज़रूरियात पूरी करने के लिए अपने वतन भेजते हैं। ये रकम न सिर्फ ख़ानदानों की ज़िंदगी बेहतर बनाती है, बल्कि मुल्की मईशत को भी मजबूत करती है। दुनिया के कई तरक्की पज़ीर ममालिक में लाखों ख़ानदान अपने रोज़मर्रा अखराजात, बच्चों की तालीम, इलाज, मुआलजे और बेहतर रिहाइश के लिए इन्हीं तरसीलात सर पर इनसार करते हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के मुताबिक ये रकम गुरबत के खात्मे और पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल में अहम किरदार अदा करती हैं। हमारे मुल्क में भी बैरून मुल्क मुकीम अफराद कौमी तरक्की में नुमाया हिस्सा डालते हैं। उनकी भेजी गई रकम ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा करती हैं और मुआशी इस्तेकाम को फ़रोग़ देती हैं। यही वजह है कि ऐसे मेहनतकश अफराद को कौमी हीरो भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का आईना, जिसमें आज आप समाअत फरमा रहे थे शहरयार की यौम पैदाइश और बैनुल अक़वामी यौम ख़ानदानी तरसीलात ज़र पर गुफ्तगू। दोस्तों, पेश है एक नगमा। ये नगमा जो आपको किसी की याद दिलाता है, तो चलिए आपकी समातों के हवाले करती हूँ। दिल चीज़ क्या है, आशा भोसले की आवाज़ में।

दोस्तों, अभी आप समाप्त फरमा रहे थे आशा भोसले की आवाज में ये नगमा। फिल्म का नाम था अमराव जान, कलाम था शहरयार का। दोस्तों, आप ये ऐसा नगमा सुन रहे थे।

दोस्तों, अब आप समाज फरमा रहे थे शाशा त्रिपाठी की आवाज में ये नगमा। फिल्म का नाम था हाफ गर्लफ्रेंड, कलाम था मनोज मुंतशिर का और मौसीकी से सजाया था मिथुन ने। दोस्तों, वक्त तो चला है हफ्त रोजा प्रोग्राम रोजगार के मौके का, जिसमें आज आप समाज फरमाएंगे हाथ से बनी चीजें जो जूट की होती हैं उसके बारे में गुफ्तगू। आज हम ऐसे कारोबार की बात कर रहे हैं जो कम सरमाया, ज़्यादा तख्लीकी सलाहियत और मेहनत के जरिए कामयाबी की राहें खोल सकता है। हमारा मौजू है हैंडमेड प्रोडक्ट्स, यानी हाथ से बनी चीज़ें और उसका कारोबार। दोस्तों, आज के दौर में मशीनी मसनूआत के बावजूद हाथ से तैयार की ये चीज़ों की मांग मुसलसल बढ़ रही है। लोग मुनफरद खूबसूरत और ज़ाती नौयत की अशिया को पसंद करते हैं, इसलिए हैंडमेड मसनूआत एक बेहतरीन कारोबारी मौका बन चुकी है। जूट की बनी चीज़ें जो हाथ से बनी होती हैं वो उसकी काफ़ी मांग होती है। हैंडमेड प्रोडक्ट से मुराद वो अशियाँ हैं जो हाथ से या महदूद मशीनरी की मदद से तैयार की जाती है। इनमें शामिल हैं जूट से बने हुए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कशीदाकारी होती है, हाथ से बने जूट के ज़रिए बैग बने होते हैं और हर तरह की आराइश की चीज़ें होती हैं। हैंडमेड मसनूआत का कारोबार ख़ास तौर पर ख़वातीन, तुलबा, घरेलू अफराद और फ़नून लतीफ़ा से दिलचस्पी रखने वालों के लिए बेहतरीन ज़रिया आमदनी बन सकता है। कम सरमाया की ज़रूरत होती है। इन कारोबार की कुछ ख़ास बातें हैं जिसमें इस कारोबार को शुरू करने में कम से कम सरमाया की ज़रूरत होती है। घर बैठे काम किया जा सकता है, ऑनलाइन फ़रोख्त के वसी मौके मौजूद हो सकते हैं, अपनी तख्लीकी सलाहियतों को आमदनी में तब्दील किया जा सकता है, रोज़गार पैदा करने की सलाहियत रखती है। सबसे पहले अपनी महारत का तयन करें, ये देखें कि आप किस तरह की चीज़ें जूट से बना रहे हैं। अगर आप इस तरह के सामान तैयार कर पा रहे हैं और अपने आर्ट में दिलचस्पी रखते हैं तो इस तरह की चीज़ों को बनाकर अपने कारोबार का सिलसिला शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में कारोबार करना आसान है और चैलेंजिंग भी, लेकिन आसान तो बहुत है। फेसबुक के पेज

बनाने बना सकते हैं और ऑनलाइन के जरिया इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है, मेयार पर समझौता ना करें। सबसे बड़ी बात यह है कि कारोबार, जब हाथ से बनी चीज़ों के कारोबार करना शुरू करें तो अपने मेयार पर ज़रूर ध्यान दें, वक्त की पाबंदी करें, ग्राहकों के साथ खुश अखलाकी से पेश आएँ, नए डिज़ाइन से मुतारिफ कराएँ, मार्केट के रुझान पर नज़र रखें। सामिन, जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। ये एक कुदरती रेशा है जो मजबूत, पायदार और माहौल के लिए महफूज समझा जाता है। प्लास्टिक के बढ़ते हुए इस्तेमाल के बाद पैदा होने वाली माहौलियाती मसाइल ने जूट की मसनूआत की अहमियत में मजीद इजाफा कर दिया है। जूट से मुख्तलिफ अकसाम की अशिया तैयार की जाती हैं, जिनमें शॉपिंग बैग्स हैं, गिफ्ट बैग्स हैं, फाइल कवर है, सजावटी अशिया है, टेबल मैट्स है, फूल रखने के गमले हैं, और भी कई तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं। कलमदान और दीगर तोहफे की अशिया इसमें शामिल है। इस तरह की चीज़ें, जूट से बेशुमार चीज़ें तैयार की जाती हैं। इस कारोबार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे कम सरमाया से घर बैठे शुरू किया जा सकता है। जूट का कपड़ा, धागा, रंग और सजावटी सामान नस्बतन कम कीमत पर दस्तयाब होता है। थोड़ी सी तरबियत और तख्लीकी सलाहियत के ज़रिए खूबसूरत मसनूआत तैयार की जा सकती है। आजकल सरकारी अदारे, निजी कंपनियां और तालीमी अदारे भी माहौल दोस्त मसनूआत को तरजीह देते हैं, इसलिए जूट के दीगर मसनूआत की मांग मसलसल बढ़ रही है। फरोख्त के लिए सोशल मीडिया एक बेहतरीन जरिया है। सोशल मीडिया के जरिए अपनी मसनूआत की तशहीर की जा सकती है। मुकामी नुमाइशों और मेलों में शिरकत भी कारोबार को वसत देने में मददगार साबित होते हैं। सामिन, अगर आप तख्लीकी सलाहियत रखते हैं और अपना छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो जूट से बनी अशिया का शोबा एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। ये न सिर्फ आमदनी का जरिया है बल्कि माहौल के तहफ्फुज में भी अहम किरदार अदा करता है, और एक छोटा सा कारोबार आपके लिए एक दिन बड़ा बन सकता है और आप कामयाबी के जीने पर चढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हफ्तरोज़ा प्रोग्राम रोज़गार के मौके, जिसमें आप हाथ से बनी चीज़ें यानी ख़ास तौर पर जूट क्राफ्ट के मतलब गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे। दोस्तों, अब वक्त तो चला है अगले नगमे का, तो चलिए आपकी समातों के हवाले करती हूँ ये खूबसूरत सा नगमा अलका याग्निक की आवाज़ में, तेरे नाम।

दोस्तों अभी आप समाज फरमा रहे थे अलका याग्निक की आवाज़ में ये नगमा। फिल्म का नाम था तेरे नाम, कलाम था हिमेश रेशमिया का और मौसीकी से सजा था हिमेश रेशमिया ने। दोस्तों सुनते हैं अगला नगमा एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में और उनके साथ दे रही हैं के एस चित्रा। फिल्म रोजा से सुनते हैं ये नगमा, ये हंसी वादिया।

दोस्तों भी आप समाप्त फरमा रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में, यह नगमा उनका साथ दे रही थी कि इस चित्रा। फिल्म का नाम था रोजा, कलाम था पी के मिश्रा का और मौसीक़ी से सजाया था ए आर रहमान ने। दिल ने जब तुझे पुकारा है, दिल ने जब तुझे पुकारा

आरा है, हर लम्हा तेरा सहारा है। मेरी दुनिया तेरे गिर्द घूमे, तू ही जीने का इशारा है। तो दोस्तों, अब आपकी समातों के हवाले करती हूँ जुबीन नौटियाल की आवाज़ में, तुम ही आना।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, ये नगमा फिल्म का नाम था मन। अब वक्त चला है अगले प्रोग्राम का, अब आप सुनते रहिए अगला प्रोग्राम और अपनी दोस्त शास्त्रा को दीजिए इजाज़त। आदाब।

तो दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलो हर्ट्ज पर, और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। तो दोस्तों इस वक्त शुरू हो चुका है कार्यक्रम सुरभि, और सुरभि के अंतर्गत हम चर्चा है, मैं आज बातें करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस के विषय में। हर वर्ष 16 जून को यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन लाखों प्रवासी कामगारों के योगदान के सम्मान देने के लिए समर्पित है जो अपने घर परिवार से दूर रहकर काम करते हैं और अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने परिवारों तक भेजते हैं। यही धनराशि, जिसे अंग्रेजी में रेमिटेंस कहा जाता है, लाखों परिवारों की शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और बेहतर जीवन का आधार बनती है। तो दोस्तों जब कोई व्यक्ति अपने घर या देश से दूर जाकर काम करता है और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने परिवार को भेजता है तो उसे पारिवारिक प्रेषण या रेमिटेंस कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति दिल्ली, मुंबई, दुबई या फिर किसी अन्य देश में नौकरी करता है और हर महीने अपने गाँव या शहर में रहने वाले परिवार को पैसे भेजता है तो वो रेमिटेंस कहलाता है। ये केवल धन का लेन देन नहीं बल्कि परिवार के प्रति प्रेम, जिम्मेदारी और समर्पण का प्रतीक है। और अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र की संस्था IFAD की पहल पर हुई थी। इस दिवस को पहली बार वर्ष 2015 में व्यापक रूप से मनाया गया और इसका उद्देश्य दुनिया को यह बताना था कि प्रवासी कामगार केवल अपने परिवारों के ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की भी महत्वपूर्ण शक्ति है। दुनिया भर में करोड़ों लोग रोजगार के लिए अपने घरों से दूर रहते हैं। ये लोग विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं, निर्माण कार्य, कृषि, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन, होटल उद्योग, तकनीकी क्षेत्र, घरेलू सेवाएं, और उनकी मेहनत से अर्जित आय का एक बड़ा हिस्सा उनके परिवारों तक पहुंचता है। यह धन बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की देखभाल, चिकित्सा खर्च और छोटे व्यवसायों के विकास में मदद करता है। भारत लंबे समय से दुनिया में सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों में शामिल रहा है। विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक अपने परिवारों को बड़ी मात्रा में धन

भेजते हैं और यह धन देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये एक छोटी सी धनराशि भी किसी भी परिवार के जीवन को बदल सकती है और रेमिटेंस के माध्यम से बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलती है, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच बढ़ती है, परिवारों का जीवन स्तर सुधरता है, घरों का निर्माण और मरम्मत होती है, छोटे व्यवसाय शुरू किए जाते हैं। इसी प्रकार रेमिटेंस सामाजिक और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन बन जाता है और ग्रामीण भारत में रेमिटेंस का विशेष महत्व है। जब परिवारों को नियमित रूप से धन प्राप्त होता है तो वे कृषि में निवेश करते हैं, बेहतर बीज और उपकरण खरीदते हैं, पशुपालन को बढ़ावा देते हैं और साथ ही साथ बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाते हैं। इससे पूरे गांव में विकास में सहायता मिलती है। रेमिटेंस का एक सकारात्मक प्रभाव महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी पड़ता है। जब परिवार के सदस्य बाहर काम करते हैं तब घर की आर्थिक जिम्मेदारियों में महिलाओं की भूमिका बढ़ती है, उन्हें निर्णय लेने के अधिक अवसर मिलते हैं और आर्थिक स्वतंत्रता का भी अनुभव होता है। आज डिजिटल तकनीक ने धन भेजने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब लोग बैंक ट्रांसफर, मोबाइल बैंकिंग, UPI और साथ ही साथ डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म के माध्यम से आसानी से धन भेज सकते हैं। इससे समय और लागत दोनों की बचत होती है। हालांकि रेमिटेंस से अनेक लाभ है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी मौजूद है, जैसे धन भेजने की अधिक लागत, वित्तीय जागरूकता की कमी, साइबर धोखाधड़ी का खतरा, बैंकिंग सेवाओं तक सीमित पहुंच। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकारें और वित्तीय संस्थाएं लगातार प्रयास करती रही है। और दोस्तों, रेमिटेंस का संबंध संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों से भी है, जैसे कि गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और आर्थिक विकास। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में रेमिटेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस हमें यह सिखाता है कि परिवार केवल साथ रहने से नहीं बल्कि जिम्मेदारियों को निभाने से भी मजबूत बनते हैं। दूर रहकर भी अपने परिवार का सहारा बनना, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाना एक महान योगदान है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम सुरभि के अंतर्गत चर्चा है में हमने जाना कि अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस केवल आर्थिक लेन देन का विषय नहीं बल्कि यह परिवार प्रेम, जिम्मेदारी और समर्पण का उत्सव है। दुनिया भर के करोड़ों प्रवासी कामगार अपने परिवारों के सपनों के पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। उनका योगदान न केवल परिवारों को बल्कि समाज और राष्ट्र को भी आगे बढ़ाने में सहायक होता है। तो दोस्तों, सुरभि कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक गीत के बाद पहल की ओर।

तो दोस्तों सुरभि कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं पहल की ओर। पहल में आज का विषय है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं में से एक माना जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन गंभीर बीमारी आने पर इलाज का खर्च कई परिवारों के लिए चिंता का विषय बन जाता है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की, ताकि जरूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। आयुष्मान भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य पहल है, जिसकी शुरुआत 23 सितंबर सन 2018 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना का एक महत्वपूर्ण भाग है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। और भारत में कई परिवार ऐसे हैं जिनकी आय सीमित है। जब परिवार का कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार पड़ता है तो इलाज के लिए बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ती है और कई बार लोग कर्ज लेने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों को कम करने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की, ताकि गरीब और ज़रूरतमंद परिवार आर्थिक बोझ से बच सकें। आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य है कि सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना, गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना, गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य होने पर व्यक्तिगत खर्च को कम करना और ग्रामीण और शहरी गरीबों का समान अवसर देना। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को कई सुविधाएं मिलती है, जैसे प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का कवर, परिवार के सदस्यों की संख्या पर कोई सीमा नहीं, कैशलेस उपचार की सुविधा, देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज, भर्ती होने से पहले और बाद में खर्चों पर भी कवरेज, कई प्रकार की सर्जरी और उपचार शामिल है। इस योजना का लाभ मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार

को दिया जाता है। पात्रता का निर्धारण विभिन्न सरकारी आंकड़ों और निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकान वाले परिवार, भूमिहीन मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार शामिल हो सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों के श्रमिक और कमजोर वर्ग लाभार्थी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आयुष्मान कार्ड है क्या? इस योजना को लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड

अधिकृत सहायता केंद्र या फिर संबंधित सरकारी व्यवस्था के माध्यम से अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है और इसके लिए आवश्यक पहचान दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। कैशलेस उपचार का अर्थ है कि पात्र लाभार्थी को अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज के लिए सीधे भुगतान नहीं करना पड़ता। अस्पताल और योजना के बीच निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भुगतान का निपटान किया जाता है। इससे मरीज और परिवार पर तत्काल आर्थिक दबाव नहीं पड़ता। इस योजना के अंतर्गत सरकारी और निजी दोनों प्रकार के अनेक अस्पताल सूचीबद्ध हैं। इन अस्पतालों में निर्धारित नियमों के अनुसार उपचार की सुविधा उपलब्ध होती है। इससे लोगों को अपने क्षेत्र के साथ साथ अन्य राज्यों में भी उपचार प्राप्त करने में सहायता मिलती है। और साथ ही साथ इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी, यानी कि कोई लाभार्थी किसी अन्य राज्य में कार्य करता है और वहां बीमार हो जाता है तो वो सूचीबद्ध अस्पताल में योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। यह सुविधा प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। स्वास्थ्य संबंधी खर्च कई बार बचत को समाप्त कर देते हैं। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य ऐसे खर्चों को कम करना है। जब परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है तो वे बच्चों की शिक्षा, पोषण और अन्य आवश्यक जरूरतों पर बेहतर ध्यान दे पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सीमित हो सकती है। आयुष्मान भारत योजना लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास करती है। इससे समय पर उपचार और बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलती है। आयुष्मान भारत भारत का एक अन्य महत्वपूर्ण भाग है, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र के लिए, जिसमें इन केंद्रों के माध्यम से वो प्राथमिक स्वास्थ्य और सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, जैसे कि स्वास्थ्य परामर्श, रोगों की प्रारंभिक जांच, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं और गैर संचारी रोगों की जाँच। कई बार लोगों योजनाओं के बारे में जानकारी के अभाव में लाभ नहीं उठा पाते, इसलिए आवश्यक है कि योजना की जानकारी प्राप्त करें, पात्रता की जांच करें, आयुष्मान कार्ड बनवाएं और अधिकृत स्रोतों से जानकारी लें। स्वास्थ्य सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमें भी नियमित स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, व्यायाम और योग को अपनाना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली बीमारियों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वास्थ्य केवल बीमारी का इलाज नहीं बल्कि बेहतर जीवन का आधार है। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी देश की प्रगति और विकास की गति और अधिक मजबूत होगी। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में प्रयास करती है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम पहल में हमने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने जाना कि यह योजना किस प्रकार पात्र परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है और गुणवत्तापूर्ण उपचार तक उनकी पहुंच को आसान बनाती है। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर, और ये प्रसारण सुन पा रहे हैं आप न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी। तो दोस्तों, सुरभि कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है, पर जाते जाते आप सभी के लिए एक मधुर तराना छोड़े जाती हूँ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस बीच श्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। उधर फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर भी रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को

उत्पादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: responses from center and states on plea to use Aadhaar only as identity proof. India rejects proposal to expand only non-permanent UN Security Council seats, calls reform bordering on failure. And India storm into semi-finals of Women's FIH Nations Cup, defeating Japan 2-1 in Auckland, New Zealand. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
2: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
1: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
2: बिल्कुल जागृति, देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले डिजी प्लेटफॉर्म्स

0: लाने के बजाय भारत ने आधार और यूपीआई जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें एआई को जोड़ देती हैं, तो भारत का डीपीआई बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है, जो एआई मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
1: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक फिवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
3: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
1: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के रूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर माईगॉव की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
5: UNSC reform would be grossly inadequate.
6: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
1: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। AIR चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला

0: और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी कोलकाता अनुष्ठान प्रचारित होच्छे संचयिता प्रचार तरंगे 297.6 meters अर्थात 1008 kilohertz मीडियम वेवे। स्टूडियोर घड़ीते समय 2:30:15। एखन शास्त्रीय संगीतेर अनुष्ठाने शुनबेन बाँशी शिल्पी आबिरलाल नाहा, राग भीम पलाशी, तबला संगते प्रशांत दे राय। शुनबेन बाँशी।

0: আকাশবাণী কলকাতা, শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় অধিবেশন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে। 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজ মিডিয়াম ওয়েভে। স্টুডিওর ঘড়িতে সময় 4:59:54। একটু পরেই সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে শক্তি সিং। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के इवियन शहर पहुंच गए हैं। इवियन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि भारत अधिक टिकाऊ और समृद्ध ग्रह के लिए सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले श्री मोदी इवियन जाने के लिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा पहुंचे। हवाई अड्डे पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय परमेलिन ने उनका स्वागत किया। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की यह लगातार

0: सातवीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज शाम प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत करेंगे। इसके बाद श्री मोदी नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना विषय पर एक उच्च स्तरीय सत्र में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। दोनों नेता पारस्परिक हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किया है। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आकांक्षाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सीरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सीरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के रूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान यस बैंकों के ऋणों की कथित धोखाधड़ी पूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि यह तलाशी अभियान कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों और यस बैंक के बीच कथित मिलीभगत से जुड़े धन शोधन मामले में सबूत जुटाने के लिए चलाया जा रहा है। जांच संकटग्रस्त संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सर्कुलर लेन देन, नीलाम की गई संपत्तियों का कम मूल्यांकन, बढ़ा चढ़ाकर या धोखाधड़ी से किए गए दावे और कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में लेनदारों के मतदान अधिकारियों और पारदर्शिता से संबंधित मुद्दों के संबंध में है। हिमाचल प्रदेश में स्वगणना अवधि पूरी होने के बाद जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत गृह सूचीकरण और आवास जनगणना के लिए जमीनी अभियान आज से प्रारंभ हो गया। राज्य में जनगणना कर्मियों द्वारा घर घर जाकर सर्वेक्षण का कार्य अगले महीने की 15 तारीख तक जारी रहेगा। मंत्रालय ने बताया कि केरल और नागालैंड में स्वगणना सुविधा प्रारंभ हो चुकी है और ये इस महीने की 30 तारीख तक उपलब्ध रहेगी। इस बीच महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान और झारखंड के साथ साथ दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में गृह सूचीकरण और आवास जनगणना का कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुका है। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Avignon on a two-day visit to participate in the G7 summit, which got underway yesterday. After arrival in Avignon, the Prime Minister, in a social media post, said that he is looking forward to engaging with world leaders and exchanging views on key global issues. He added that India remains committed to advancing collective efforts for a more sustainable and prosperous planet. Our correspondent covering the Prime Minister's G7 visit has filed this report.
3: This marks the Prime Minister's 7th consecutive appearance at the G7 summit and India's 13th

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 5:21:45 आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। दोस्तों संचेता चैनल पर आप सुन रहे हैं जिस कार्यक्रम को, उस कार्यक्रम का नाम बता दूं आपको। आज सबसे पहले तो आज आप उर्वशी सुन रहे हैं और उर्वशी में आज की शाम यानी कि मंगलवार की शाम हम आपके लिए लेकर आते हैं खास सेगमेंट जिसका नाम है एक ही फिल्म से। जी हाँ, वही सेगमेंट जिसके अंतर्गत हम किसी खास किसी विशेष फिल्म के विषय में करते हैं ढेर सारी बातें और साथ ही साथ सुनाते हैं उसी फिल्म के बेहतरीन तराने। तो दोस्तों आज किस फिल्म के विषय में होगी बातें ये जरूर आपको बताऊंगी, लेकिन आपको बता दूं कि अभी स्टूडियो की घड़ी जो है वो इशारा कर रही है कि आपको एक बेहतरीन खूबसूरत जो है तराना वो उसे मैं सुना दूं, और सुनाने के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि ये तराना किनकी आवाज में। तो आपको सबसे पहला जो गीत मैं सुनाने जा रही हूँ इस कार्यक्रम के जरिए, ये गीत है आशा भोसले की आवाज में। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल, जिसमें पहला गीत, जिस कार्यक्रम में पहला गीत आप सुनेंगे इस खूबसूरत आवाज में। जी हाँ, आशा भोसले की आवाज है। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: वेल फ्रेंड्स, अभी आप सुन रहे थे इस खूबसूरत से तराने को फिल्म खूबसूरत से, और ये जो फिल्म है इसी फिल्म के बारे में आज हम बातें करेंगे कार्यक्रम उर्वशी के एक ही फिल्म से में। दोस्तों, जब फिल्म की बात छिड़ती है तो गीतों की भी बात छिड़ती है और कास्ट की भी। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो फिल्म अभी आप जिसके विषय में आज बातें होंगी, इस फिल्म को निर्देशित किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने, और लेखक के तौर पर गुलजार थे इस फिल्म के लिए, और साथ ही साथ इस फिल्म को अभिनय से सजाया था अशोक कुमार, रेखा, राकेश रोशन, शशिकला और दीना पाठक ने। संगीत की अगर बात की जाए तो आर डी बर्मन ने इस पूरे फिल्म में जो गीत हैं उनको संगीत से सजाया था। साथ ही आपको बता दें कि ये फिल्म रिलीज हुई थी 25 जनवरी 1980 को, और आपको बता दें इसी नाम की कई सारी फिल्म्स ऑलरेडी बॉलीवुड में हैं। बॉलीवुड में खूबसूरत नाम से तकरीबन 3 फिल्म्स तो हैं ही, और इसके अलावा जिस फिल्म के बारे में आज हम बातें करने जा रहे हैं, इस फिल्म के पहले गीत को आप सुनकर ही समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं ये जो फिल्म है इसमें दो बहनों की शरारत भरी ये जो गीत था, इस गीत को सुनकर ऐसा लगता है जैसे मानो ये फिल्म जो है वो थोड़ी सी कॉमेडी के साथ साथ मज़ेदार भी होने वाली है। तो आपको बता दें दोस्तों, इस फिल्म की पटकथा के बारे में, इस फिल्म के बारे में और भी ढेर सारी बातें जरूर करेंगे। आपको बता देते हैं कि आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल पर। स्टूडियो की घड़ी में समय है 5:29 और 29 सेकंड। साथ ही साथ मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट देविका, और आपको बता दूं कि इस फिल्म के गीत जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा पसंद किए गए। पहला गीत ही आपने सुनकर समझ लिया होगा, इसी तरह के बहुत सारे गीत इस फिल्म में थे, जिसमें से आपको बता दें कि पहला गीत तो आप सुन चुके हैं, लेकिन जो दूसरा गीत है वो गीत अब आपको सुनाने जा रही हूँ रेखा के साथ स्वपन चक्रवर्ती की आवाज़ में। आप सुनेंगे ये अगला गीत, फिल्म का नाम खूबसूरत, 1980 में ये आई थी फिल्म।
1: कायदा कायदा कायदा, हर चीज में कायदा, आखिर इसका फायदा। कायदा तोड़ के सोचो, एक दिन चांद निकलता नीचे से और मैदान पे रखा होता।

0: अच्छा सोचो, सूरज का रंग नीला होता
1: होता
0: और पेड़ों का रंग लाल
1: लाल,
0: पंछी रहते पानी में
1: वाह,
0: और मच्छी गगन विशाल
1: वाह वाह वाह।

वेल फ्रेंड्स, अभी आपने ये गीत सुना कायदा कायदा, और ये जो कायदा यानी कि नियम है, इन्हीं नियमों से कहीं ना कहीं जुड़ा था इस फिल्म का कथानक। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, ये जो फिल्म थी इसमें कॉमेडी भी है, थोड़ी सीरियस चीज़ें भी हैं और कुछ वास्तविकता भी है, जिसे जानना और समझना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो फिल्म है, इस फिल्म की कहानी पुणे में, पुणे की है, और पुणे में एक उम्रदराज महिला है जिनका नाम है निर्मला गुप्ता। इस किरदार को निभाया दीना पाठक ने। ये अपने सख्त हैं, अनुशासक हैं, और साथ ही साथ अपने घर को, घर के लोगों को नियमों के अनुसार चलाती हैं। उनका मानना है कि नियमों के बाहर जाकर कोई भी काम नहीं कर सकता। वहीं उनके जो पति का किरदार निभाया है अशोक कुमार ने, उनके किरदार का नाम है द्वारका प्रसाद गुप्ता। और आपको बता दें कि उनके एक बेटे का नाम इंद्र कुमार गुप्ता है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर होते हैं, और दूसरे बेटे का नाम है चंद्र गुप्ता। तो दोस्तों ये जो कहानी है, ये इन चार किरदारों के साथ और भी कुछ किरदारों से जुड़ी है, और इनमें दो और मूल किरदार हैं, और वो हैं अंजू और मंजू। ये अंजू दयाल और मंजू दयाल दोनों बहनें होती हैं, जिसमें मंजू दयाल की शादी तय होती है चंद्र गुप्ता से। और ये जो चंद्र गुप्ता हैं, ये निर्मला गुप्ता के बेटे होते हैं, और उनके पूरे घर में एक तरह से नियम, अनुशासन, और जैसे ये गीत कह रहा था कायदा कायदा, ये इस तरह का जो एक एटीट्यूड, एक माहौल जो है पूरे घर में रहता है। और इसी माहौल में ये लोग बड़े भी होते हैं, लेकिन जब उसमें एंट्री होती है मंजू की, तो मंजू के साथ कहीं ना कहीं अंजू भी आती है अपनी दीदी के ससुराल में, और तब होता है परिवर्तन, एकदम चेंज हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। और साथ ही साथ जो रेखा का किरदार जो है यहाँ पर, यानी कि अंजू का जो किरदार है, वो किस प्रकार से सारी चीज़ें जो है मैनेज करती है, और साथ ही साथ पूरे परिवार का दिल जीत लेती है एक्सेप्ट निर्मला गुप्ता के। फिर धीरे धीरे जब निर्मला गुप्ता को समझ में आता है कि

मंजू भले ही चंचल हो लेकिन उसके मन में परिवार के लिए और अपनों के लिए खास जगह है, तो उसे भी मिलता है प्रेम, प्यार, सम्मान और फिर उसके बाद होती है शादी इंद्र और मंजू की।

तो दोस्तों ये तो थी कहानी, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें इस कहानी के साथ ये जो फिल्म है इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, इस फिल्म के गीतों को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और साथ ही साथ इस फिल्म में बहुत सारे जो अवार्ड्स हैं वो भी जीते। कौन कौन से अवार्ड्स हैं वो ज़रूर बताऊंगी आपको, लेकिन पहले हो जाए ये खूबसूरत सा तराना। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल।

बताओ, नाम बताओ, क्या किया है काम बताओ। बारिश में ये भीग रहा था, बिन परमिट के छींक रहा था, छींक रहा था। ऐसी हल्की हरकत की है, ऐसे देश का वासी होकर

0: करे मरम्मत। सड़क पे चलते चलते छिलके पे गिर पड़ा था और मुझसे दो कदम पर ये संतरी खड़ा था। इसने नहीं बचाया, मुझको नहीं उठाया, रस्सी से बांध कर ये दरबार में ले आया।
1: उफ, वीरों की इस धरती पर अब ऐसे लोग भी रहते हैं। इस देश का फ्यूचर क्या होगा, हिस्ट्री में क्या कुछ कहते हैं। गिरे तो बस एक छिलके पर और छिलका भी एक केले का। इस देश में ऐसा वीर भी है, न दमड़ी का न ढेले का। किसी भी चिकनी फिसलन पर 6 बार ले जाओ, गिराओ इसको। जिस केले पर ये फिसला है वो केला ढूंढ खिलाओ इसको।

0: चक्कर है सर, घन चक्कर।
1: घन चक्कर,
0: घन चक्कर, सुनासा सुनासा सुनाई देता है।
1: ये शायर है सर,
0: दुआ देता है या दुहाई देता है, सभी काम उल्टे हैं इसके हुजूर। रात को जागता है, सुबह सोता है, गम अगर इसका अपना हो तो हंसता है, दूसरे का मिले तो बहुत रोता है।
1: समझे।
0: यही

0: वो हजरत बोलते कुछ नहीं, शोर करते हैं ये, सोचते हम हैं, वोर करते हैं ये, कोई कानून ये मानते ही नहीं, जितना रोको इन्हें और करते हैं ये, खुद तो करते नहीं सब कराते हैं ये, पेन में बारूद भर के चलाते हैं ये, ईश इनका साया भी रहने न दो पास में, दफन कर दो इन्हें जाओ इतिहास में।
1: दोस्तों अभी अभी आपने सुना इस गीत को जिसमें आवाज थी उषा कल्याण और उनके साथ कल्याणी की। आपको बता दें कि ये जो गीत था यानी सारे नियम तोड़ दो, ये गीत इसी फिल्म में यानी खूबसूरत फिल्म में दो तरीके से गाया गया, एक तो उषा के साथ साथ कल्याणी की आवाज में और दूसरा था आशा भोसले की आवाज में। तो दोस्तों आपको बता दें, जैसा कि मैंने इस गीत के ठीक पहले आपको कहा था कि आपको बताऊंगी कि किस कैटेगरी में इस फिल्म ने नामित किया अपने नाम को फेयर में और साथ ही साथ जीता किस कैटेगरी में, तो सभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले बता दूं कि फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है वो इस फिल्म को मिला था, ऋषिकेश मुखर्जी को ये पुरस्कार मिला था। तो पहला पुरस्कार तो फिल्म फेयर का इसमें मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का। इसके अलावा इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में पुरस्कार जीता था रेखा ने, और केष्टो मुखर्जी ने इस फिल्म में फिल्म फेयर अवार्ड जीता था सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के रूप में। दोस्तों इसके अलावा तीन और कैटेगरीज थी जिस कैटेगरी में या जिस जगह पर इन्हें नामांकित किया गया था। तो आपको बता दें कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में ऋषिकेश मुखर्जी को इस फिल्म के लिए नामित किया गया था। इसके अलावा डीएन मुखर्जी को नामित किया गया था सर्वश्रेष्ठ कथा के रूप में लिखने के लिए, और साथ ही साथ दीना पाठक को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में इस फिल्म में किया गया था नामित। तो ये तीनों पुरस्कार भले उन्होंने जीते ना हो लेकिन नामांकन जरूर किया गया था और पुरस्कार जो है वो तीन जरूर जीते थे इस फिल्म ने फिल्म फेयर अवार्ड्स। साथ ही आपको बता दें दोस्तों ये जो फिल्म है, इस फिल्म में कुल 5 गीत हैं और उन गीतों में से ऑलरेडी मैं आपको जो गीत है, कुछ गीत हैं वो सुना चुकी हूँ, अभी बाकी और हमारे पास बचे हैं 2 गीत। तो आपको एक गीत तो और फिर से सुनाऊंगी। अभी जो आप गीत सुन रहे थे सारे नियम तोड़ दो, इसे आपने सुना उषा और कल्याणी की आवाज़ में, लेकिन यही गीत पार्ट 2 के रूप में है आशा भोसले की आवाज़ में। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

वेल फ्रेंड्स, अभी आप सुन रहे थे इस गीत को आशा भोसले की आवाज में। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 5:49 और 35 सेकंड। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। और इस चैनल पर अभी जारी है कार्यक्रम जिसका नाम है उर्वशी। और आज यानी मंगलवार की शाम हम आपके लिए लेकर आते हैं खास सेगमेंट। इस सेगमेंट का नाम है एक ही फिल्म से, और एक ही फिल्म से में हम आज सुन रहे थे फिल्म खूबसूरत के बेहतरीन तराने। और ये जो फिल्म है, फिल्म खूबसूरत, ये आई थी 1980 यानी 1980 में। इस फिल्म में मुख्य किरदार में, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी, एक बार फिर से बताना चाहूंगी, रेखा के साथ अशोक कुमार, दीना पाठक, साथ ही साथ इस फिल्म में और भी कई ऐसे एक्टर्स थे जिन्होंने अपने अभिनय से इस फिल्म को सजाया था। साथ ही आपको बता दें, इस फिल्म में राकेश रोशन को भी हमने देखा था। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी से और इशारा करिए कि आपको आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत, इस फिल्म का वन ऑफ द बेस्ट गीत जो है वो सुनाते हुए करते हैं विदा। और फिलहाल आप सभी सुनेंगे आशा भोसले के साथ अशोक कुमार की आवाज में आज के कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उर्वशी। उर्वशी में आज बस इतना ही। आपसे फिर से होगी मुलाकात 6:10 पर। फिलहाल इस कार्यक्रम के ठीक उस पार अगला कार्यक्रम कर रहा है आप ही का इंतजार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। इस बीच शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने के लिए काम किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन

0: जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे। अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी सुबह की कार्य बैठक में G7 नेताओं के साथ शामिल हुए, लेकिन वार्ता जल्दी समाप्त हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान यस बैंक के ऋणों के कथित धोखाधड़ीपूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय ने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, उनके निदेशकों और कर्मचारियों के साथ साथ यस बैंक के पूर्व कर्मचारी के परिसर की तलाशी ली। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर किया जाएगा। दार्जिलिंग में कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जाँच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका में ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम HIF हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर है। अगला मुकाबला भारत का उरुग्वे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Evian on a two-day visit to participate in the G7 summit, which got underway yesterday. After arrival in Evian, the Prime Minister, in a social media post, said that he is looking forward to engaging with world leaders and exchanging views on key global issues. He added that India remains committed to advancing collective efforts for a more sustainable and prosperous planet. Our correspondent Ankit Kumar, who is covering the Prime Minister's G7 visit, joins us live from Evian for the latest updates. Ankit, what significance does this G7 summit hold for India?
2: Yes, Saira, it's really, really significant. The Prime Minister will attend a key G7 working session in some time. The focus of this session is on the forging new partnerships and rebuilding international solidarity. The Prime Minister will be sitting down with G7 leaders, partner nations and top officials from the World Bank and the African Development Bank. See, India's regular presence at this summit is highly significant. India has truly emerged as a major global power. Today, the entire world is looking toward New Delhi for real solutions.

200 स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 6:10 और 20 सेकंड। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। इस कार्यक्रम और चैनल को आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, हर कोई चाहता है आत्मनिर्भर होना। वार्ता के अंतर्गत आज जिस खास विषय के बारे में हम बात करेंगे वो बात है एक ऐसे अभियान की जो अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सभी को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी पहल के बारे में भारत सरकार के द्वारा जिसने आत्मनिर्भरता की दिशा में हमें नया रुख दिखाया। इस अभियान का नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आत्मनिर्भर शब्द का अर्थ होता है अपने बलबूते पर, अपने दम पर आगे बढ़ना और अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करना।

करना और दूसरों पर निर्भर कम रहना, यही सोच लेकर वर्ष 2020 में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की अभियान की शुरुआत की थी। और आपको बता दें, इस अभियान की कहानी के बारे में आज सबसे पहले हम बात करेंगे। आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत साल 2020 में हुई। पूरी दुनिया जब कोरोना महामारी से जूझ रही थी, उस समय उद्योग बंद हो गए थे, व्यापार प्रभावित पड़ा था और आर्थिक गतिविधियां भी काफी हद तक धीमी पड़ गई थी। ऐसे समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई साल 2020 को इस अभियान की घोषणा की। इस अभियान के तहत लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य था देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देना और भारत को आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ दुनिया से अलग हो जाना बिल्कुल भी नहीं था। इसका अर्थ था भारत अपनी क्षमताओं को विकसित करे, अपने उत्पादों को बढ़ावा दे और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन करने के लिए मजबूत बने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान के विषय में बताते हुए इस अभियान का एक मंत्र हमें दिया था और वो था लोकल के लिए वोकल, अर्थात स्थानीय उत्पादों को अपनाएं और उनका प्रचार करें। भारत आत्मनिर्भर के बनने के लिए उसने 5 जो बुनियादी चीज़ें थी उस पर ये ढांचा आधारित था। इसके बारे में अगर बात की जाए तो अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति देना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था और उसे अधिक मजबूत बनाना भी इस अभियान का उद्देश्य था। इसके अलावा बुनियादी ढांचे की अगर बात की जाए यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो विश्व स्तरीय सड़कों, रेलवों, बंदरगाहों और अन्य सुविधाओं का निर्माण करना भी इसके अंतर्गत पड़ता है। इसके अलावा सिस्टम की अगर बात की जाए तो तकनीक आधारित और पारदर्शी व्यवस्था विकास करना भी इस अभियान का मुख्य उद्देश्य माना जा सकता है। साथ ही अगर बात की जाए जनसांख्यिकी की तो भारत की युवा आबादी को देश की सबसे बड़ी ताकत बनाना इस अभियान का एक मूल उद्देश्य माना जा सकता है। इसके अलावा मांग की यानी डिमांड की अगर बात की जाए तो घरेलू बाजार की मांग को बढ़ावा देना और साथ ही स्थानीय उत्पादों की खपत बढ़ाना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा, भारत में लाखों छोटे और मध्यम उद्योगों रोजगार प्रदान करना और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई सारे जो सेक्टर हैं उन्हें पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बनाना इस अभियान का मूल उद्देश्य माना जाता था।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एमएसएमई सेक्टर को विशेष सहायता दी गई और उन्हें आसन ऋण, वित्तीय सहायता और नई योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया गया। इससे लाखों उद्योगों को नई ऊर्जा भी मिली और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े। कृषि के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये हम सभी जानते हैं। और इस अभियान के अंतर्गत किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के साथ साथ कृषि अवसंरचना के विकास करने और कृषि उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग की दिशा में कई कदम भी उठाए गए। इसी अभियान के तहत किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया। मेक इन इंडिया को नई ताकत आत्मनिर्भर भारत अभियान से मिली। दोस्तों, आपको बता दें कि इस अभियान का जो उद्देश्य था वो भारत में अधिक से अधिक वस्तुओं का निर्माण करने के साथ साथ आयात कम करने और निर्यात

प्राप्त बढ़ाने के उद्देश्य से भी किया गया। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण और अन्य क्षेत्रों में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, पहले भारत रक्षा की अगर बात की जाए तो पहले भारत रक्षा उपकरणों के लिए बड़े पैमाने पर दूसरे देशों पर निर्भर करता

उपकरणों के निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इससे न केवल सुरक्षा मजबूत हुई है बल्कि रोजगार और निर्यात के अवसर भी बढ़े हैं। डिजिटल भारत और डिजिटल तकनीक की आज के विकास का आधार बन चुका है और साथ ही साथ भारत ने डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, ई गवर्नेंस, डिजिटल सेवाओं में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। साथ ही UPI जैसे तकनीक ने भारत को दुनिया के सामने एक उदाहरण के रूप में ही प्रस्तुत किया है। और आपको बता दें, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिलकर देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। आज भारत दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप देशों में शामिल हो चुका है और आत्मनिर्भर भारत अभियान ने युवाओं को नवाचार, उद्यमिता के लिए प्रेरित किया है। नई कंपनियां, नई तकनीकें और नए विचार भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा भी दे रही हैं। युवा अब नौकरी तलाशने के साथ साथ रोजगार देने वाले भी बन रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए महिलाओं की भूमिका की, तो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका की भी अत्यंत विशेष उनका स्थान है। स्वयं सहायता समूहों, महिलाओं उद्यमियों और ग्रामीण महिलाओं के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से इन्हें सशक्त बनाया जा रहा है और आज महिलाएं शिक्षा, व्यापार, कृषि और तकनीक सहित हर क्षेत्र में अपने योगदान दे रही हैं। भारत की सबसे बड़ी शक्ति यानी उसकी युवा आबादी भी आज इसी अभियान के अंतर्गत अपने आप को और ज़्यादा विकसित कर रही है। कौशल विकास कार्यक्रमों, स्टार्टअप योजनाओं और डिजिटल प्रशिक्षणों के माध्यम से युवाओं को नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ने कई उपलब्धियां भी हासिल की। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्थानीय उत्पादनों में वृद्धि, स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिला, डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहा है, रक्षा उत्पादन मजबूत हुआ है, रोजगार के नए अवसर भी बने हैं और साथ ही निर्यात में वृद्धि हुई है। दोस्तों, आज की वार्ता में बस इतना ही। आज हम बात कर रहे थे एक विशेष अभियान के विषय में। जी हाँ, इस अभियान का जो नाम है वो है आत्मनिर्भर भारत अभियान। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगला कार्यक्रम आपका कर रहा है इंतजार।

वेल फ्रेंड्स, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 6:36 और 35 सेकंड। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल और फाल्गुनी पाठक के आवाज में इस गीत के साथ आप सभी का स्वागत है मिश्रित गीत संगीत के कार्यक्रम यानी गुलगुलशन में, जिसे लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त और होस्ट देविका। और दोस्तों, आपके लिए बेहतरीन तराने हैं हमारे पास। फिलहाल आप सभी का स्वागत हुआ इस गीत के साथ, तो अगला गीत है बहुत ही खूबसूरत, जय वालिया की आवाज में आप सुनेंगे ये अगला गीत जिसमें

वेल फ्रेंड्स, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथ ही साथ हम सबके फेवरेट जगजीत सिंह की आवाज में ये खूबसूरत सी गजल और एक के बाद एक बेहतरीन तराने हैं आज के इस कार्यक्रम में। और आपको बता दें, फिलहाल अभी आप जो गीत सुनेंगे वो भी है बेहतर ही, बहुत ही खूबसूरत। तो फिलहाल आप सभी के लिए पेश है आज के कार्यक्रम का ये अगला तराना।

वेल फ्रेंड्स, सोनू निगम की आवाज में चंदा की डोली, इसे सुनते सुनते स्टूडियो की घड़ी में समय 6:55 और 30 सेकंड यानी कि आज के कार्यक्रम गुलगुलशन का अंतिम गीत आप सभी के लिए पेश है। तो आइए सुनते हैं उस्ताद सुल्तान खान के साथ चित्रा की आवाज में ये अगला गीत, और दीजिए अपनी दोस्त होस्ट देविका को गुलगुलशन से विदा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के एविया शहर पहुंच गए हैं। एविया पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की ये लगातार 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। एवियों में इस समय सम्मेलन का आउटरीच सत्र चल रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मुलाकात करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने का प्रयास किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जा रही सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी अब यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UGC परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख

0: से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता को बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेशों को भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है। इसमें गांवों में अब कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट को वापस ले लिया गया है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकी कार्य है जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर ही किया जाएगा। दार्जिलिंग के कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री छाया श्रमिक योजना के अंतर्गत दार्जिलिंग पहाड़ियों और तराई डुअर्स क्षेत्र में बंद पड़े 25 चाय बागानों को फिर से खोलने के प्रयास किए जाएंगे। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनन से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि दक्षिणी लेबनन पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल इस समझौते को अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इसराइल की अपनी प्राथमिकताएं हैं और वो लेबनन में बफर जोन में तब तक बना रहेगा जब तक आवश्यक होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल होंगे आमने सामने। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Manoj Singh Rana. Prime Minister Narendra Modi is participating in a high-level working session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity at the G7 Summit in Evian, France. The session is being attended by leaders of the G7 nations, partner countries and key representatives from the World Bank and the African Development Bank. The meeting just commenced after French President Emmanuel Macron formally welcomed the Prime Minister and leaders of other partner countries, followed by a group photograph of the participating leaders. Earlier today, the Prime Minister arrived in Evian on a two-day visit to participate in the summit, which got underway yesterday. On the sidelines of the summit, the Prime Minister has a packed diplomatic schedule. He is scheduled to hold bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer, and the President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later tonight, he will attend a gala dinner hosted by French President Emmanuel Macron. A major focus of the Prime Minister's engagement at the summit will be his meeting with US President Donald Trump tomorrow. The two leaders are expected to hold wide-ranging discussions on bilateral cooperation across sectors, while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. U.S. allies at the Group of Seven summit of major industrialized nations worked today to push the war in Ukraine up the agenda of President Donald Trump after more than 4 years of the conflict. Host President Emmanuel Macron of France said he will seek to persuade Trump to continue supporting Ukraine and increase pressure on Russia to help reach a peace agreement. As the U.S. under Trump has cut back aid to Ukraine, France and its European

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:30 और 55 सेकंड। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी इशारा कर रही है कि शुरू हो चुका है कार्यक्रम जो कि आप सभी के लिए रोज 7:30 बजे प्रस्तुत होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम दर्पण की, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आप सभी के लिए हम लेकर आते हैं एक नजर। दोस्तों, एक नजर के अंतर्गत सबसे पहले आपके लिए प्रस्तुत है आज का विषय। आपको बता दें, आज एक नजर के अंतर्गत हम बातें करने वाले हैं उस खास दिवस के विषय में जो आज ही के दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, आज यानी कि 16 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस। अब क्या है ये दिवस, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में होंगी बातें एक नजर के अंतर्गत। दोस्तों, आज हम एक नज़र के अंतर्गत बातें करने जा रही हैं एक ऐसे दिवस की जो दुनिया भर के करोड़ों परिवारों की खुशियों, सपनों और आर्थिक मजबूती से जुड़ा हुआ है। और इस दिवस का नाम है अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस, यानी कि एक ऐसा दिवस जो आज यानी 16 जून को मनाया जाता है। और प्रेषण शब्द, या जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं, इसका अर्थ होता है धनराशि, वो धनराशि जो अपने घर परिवार से दूर रहकर काम करने वाले लोग अपने परिवार के लिए भेजते हैं। दुनिया के लाखों लोग रोजगार, शिक्षा और बेहतर अवसरों की तलाश में दूसरे शहरों या देशों में रहते हैं और अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने परिवारों तक

पहुंचाते हैं। ये दिवस उन मेहनती प्रवासी श्रमिकों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जो अपने परिवारों के जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और निरंतर परिश्रम भी करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, साल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 जून को आधिकारिक रूप में अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस के रूप में मनाने की मान्यता दी। इसका उद्देश्य लोगों को ये समझाना था कि प्रवासी श्रमिकों द्वारा भेजी गई धनराशि केवल आर्थिक सहायता नहीं होती, बल्कि ये शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और बेहतर जीवन के अवसरों को माध्यम बनाने का भी एक सोर्स होती है। तो दोस्तों आप सभी के को इस दिवस के विषय में बताकर अच्छा भी लग रहा है, और साथ ही ये बात है, ये दिवस बेहद खास है क्योंकि परिवार से जुड़ा है ये खास दिवस। दोस्तों फिलहाल आप सभी के लिए पेश है आज के कार्यक्रम का पहला तराना सोनू निगम और सादा सरगम की आवाज में। आइए सुनते हैं फिल्म हम तुमसे ये गीत।

वेल फ्रेंड्स, फिल्म हम तुमसे, आप सुन रहे थे ये गीत। और इस फिल्म के इस गीत के बाद अब आपको बता दें कि कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत हम मंगलवार की शाम आपके लिए लेकर आते हैं आज का खास सेगमेंट, यानी कि वो सेगमेंट जिसमें हम कुछ खूबसूरत पुराने तराने सुनते हैं, यानी कि फिर छिड़ी बात। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी के लिए आज का पहला गीत है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और आपको बता दें इस फिल्म और गीत के बारे में, दोस्तों ये जो गीत है इसे हमने लिया है फिल्म मेरे सनम से। इस गीत में आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की तो है ही, साथ ही इस गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और ओपी नैयर ने इस गीत को धुन में पिरोया है। और आपको बता दें कि आप सुनेंगे इस गीत को 297.6 मीटर यानी 1008 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता के संचिता चैनल पर।

वेल फ्रेंड्स, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में ये खूबसूरत बेहतरीन सतराना नजराना। और इस गीत के जो बेहद खूबसूरत बोल थे वो लिखे थे अमित खन्ना ने और राजेश रोशन ने इसे धुन में पिरोया था। फिल्म देश परदेश से किशोर कुमार की आवाज में इस गीत के बाद अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। और आपको बता दें कि इस बार जो गीत है इसके बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और SD बर्मन ने गीत को धुन में पिरोया है। फिल्म का नाम गाइड। आइए सुनते हैं गाइड फिल्म का ये गीत।

फिल्म गाइड से आपने सुना ये बेहतरीन रोमांटिक सा तराना कार्यक्रम जिसका नाम है दर्पण की फिर छिड़ी बात में। दोस्तों आपको बता दें 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी कोलकाता का संजीदा चैनल। कुछ गीतों का जादू सालों बाद भी वैसा का वैसा ही बना रहता है, उन्हीं में से एक ये गीत था जिसे आपने सुना फिल्म गाइड से। और आपको बता दूं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ ने इस गीत के बोलों में जैसे जान ही डाल दी हो। दोस्तों फिलहाल स्टूडियो की घड़ी का ये इशारा है कि आपसे विदा लेने के लिए मुझे एक और गीत ज़रूर बजाना होगा। तो फिलहाल आप सभी के लिए आज के कार्यक्रम का ये अंतिम तराना, और इस तराने को सुनते सुनते दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट दीपिका को इजाज़त। आपको बता दूँ फिल्म प्रेम पुजारी से किशोर कुमार की आवाज़ में और नीरज के बोलों के साथ धुन SD बर्मन की। तो दोस्तों इन बेहतरीन तरानों के साथ फिलहाल आप सभी से लेती हूँ विदा, होगी आपसे मुलाकात वेरी सून। तब तक के लिए नमस्कार, शबा खैर, शिवरात्रि।

स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल समय हो चला है 7:49 और आपको 59 मिनट, और आपको बता दें अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे आज के दिन का अगला कार्यक्रम। सुनते रहें, साथ रहें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियां में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियां में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायु सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: Tele-Locke app, website www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की पहली जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई औद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल

0: जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराखची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख

0: structure you had put into place to stay in power, obviously people won't accept.
1: So Kanchanji, going forward, West Bengal Chief Minister Shuvendu Adhikari has now announced a series of investigations. You know, he has set up committees to look into excesses across the spectrum. One is what you just said, and also the extortion rackets, the cut money rackets that were going on. That will help.
0: It is important that there should be fair investigation, fair prosecution and fair justice. Because agar aapne jo jinhone bhi ye galtiyan ki hain, ye anyay kiya hai, inko agar saza nahi milta hai, if they are not punished, then tomorrow you will find another set of exploiters coming into play. So ye jaruri hai. Dusri baat jo hai, aapko ye bhi dhyan mein rakhna hoga ki जो डिटेल्स अब उभर के आ रही हैं, किस किस्म की एक्सप्लॉयटेशन होती थी, किस किस्म का तोलाबाजी हो रहा, किस किस्म का कट मनी. यू सी, दीज आर ऑल थ्री थिंग्स. तोलाबाजी इज कोई अगर रेड़ी भी लगाता है, ठेला लगाता है, उसका दिन में 100 रुपए का, या कोई ऑटो चलाता है तो उसका दिन में 100 रुपए का रोजगार होता है, तो आप उससे जाकर 50 रुपए उगा लीजिएगा. दैट इज तोलाबाजी. कट मनी है कि अगर कोई काम हो रहा है, सरकार काम करवा रही है, पंचायत का काम है, कुछ है, जो भी है, उसमें जो ठेका जिसको मिल रहा है, रास्ता बनाने का, ड्रेन बनाने का, टैप लगाने का, आप उससे उसका जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है उसका एक परसेंटेज आप उससे निकाल लीजिएगा, रंगदारी टैक्स जिसे कहते थे. सो दैट वॉज कट मनी. एंड देन यू हैड सिंडिकेट्स. आप घर बना रहे हैं तो आपको अपना ईंटा, बालू, सीमेंट, लोहा पार्टी के लोगों से खरीदना पड़ेगा और उन्हीं के रेट पर खरीदना पड़ेगा. उनका जो ब्रांड है, उनका जो भी है, वही लेना पड़ेगा. आपका कोई इसमें ऑप्शन नहीं है. या आप अपना घर बेच रहे हैं, समझिए आपके पास मकान है जिसका वैल्यू 10 करोड़ है. वो लोग आकर बोलेंगे, सिंडिकेट कहेगी, जी ये मकान हम लोग तय करेंगे, आप कितने में बेचोगे, किसको बेचोगे, और 1 करोड़ का बिकवाएंगे, बाकी 9 करोड़ से वो लोग आधा 4.5 करोड़ अपने जेब में ले लेंगे.
1: सो एन एब्सोल्युटली
0: एक्सप्लॉइटेटिव. इट वाज नॉट अ गवर्नमेंट, इट वाज अ मॉन्यूमेंटल, क्या कहें, इट वाज अ फैक्ट्री ऑफ करप्शन, इट वाज एन इंडस्ट्री ऑफ करप्शन, इट वाज नॉट अ गवर्नमेंट.
1: एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी. अपने विक्ट्री स्पीच में प्रधानमंत्री ने May 4 को एक बात का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि इंडिया की जो गोल्डन एज जब थी, तो 3 भाग हमारे देश के उस गोल्डन एज के पिलर्स थे, अंग, बंग और कलिंग. तो अंग मतलब बिहार पहले भाजपा की विक्ट्री में आ चुका था, उसके बाद ओडिशा भाजपा जीत चुकी थी, और अब बंगाल की बारी थी, वो अब May 4 को रिजल्ट में हो गया. तो कितना इम्पोर्टेंट आप इस स्टेटमेंट को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करना है तो ये 3 भागों को विकसित करना जरूरी है, क्योंकि ये पिछड़ गए हैं भारत की विकास यात्रा में.
0: ये बात सही है. और अंग बंग कलिंग जो आप कह रहे हैं, बट उसमें आप असम को भी जोड़िए, जो अपने जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको भी जोड़िए. और जब तक ईस्ट में डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक ईस्ट की इकोनॉमिक कहानी एक कॉम्पिटिटिव स्टोरी नहीं बनेगी, तब तक भारत अपने आप को विकसित भारत नहीं कह पाएगा. अगर आप भारत के मानचित्र को देखें, वेस्ट इंडिया काफी डेवलप्ड है, साउथ इंडिया भी काफी डेवलप्ड है, ईस्ट इंडिया बस एक ही जगह रह जाता है जहां पर अभी तक कुछ खास काम नहीं हो पाया. मिडिल इंडिया, आप अगर मध्य प्रदेश को देखें, मध्य प्रदेश की जो रिकवरी स्टोरी है, बीमारू प्रदेश से आज कहां पहुंच गई है. अगर आप छत्तीसगढ़ को देखें, नया प्रदेश है और इतनी डिप्राइव्ड जोन थी कि उसको अलग स्टेट बनाना पड़ा, आज छत्तीसगढ़ कहां पहुंच गया, और वेस्ट बंगाल वहीं का वहीं पड़ा रह गया. तो हमें आगे का देखना पड़ेगा. एंड वेस्ट बंगाल कैनॉट जस्ट बी अ पोटैटो इकोनॉमी. That we produce the country's most largest amount of potatoes.
1: Like you heard Kanchan Gupta ji, that the destiny of India is inextricably linked to the destiny of Bengal, because you would recall that it was from Bengal that the British also began experimenting with their divide and rule policy, because they realized very early that if they have to capture the soul of India, they must first break Bengal. So that's the importance of West Bengal to the fate and destiny of our country. Thanks for joining us, Kanchan ji. Thank you.
2: In this special program, you were listening to a discussion on West Bengal after BJP's historic mandate, governance, development and future priorities. Participants were Kanchan Gupta, senior journalist and political

0: এবার বিশ্বকাপের খবর। ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপে আজ গতবারের রানার্স ফ্রান্স সেনেগালের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে তাদের অভিযান শুরু করবে। ইস্ট রাদারফোর্ডে খেলা শুরু হবে রাত 12:30। আগামীকাল ফুটবল বিশ্বকাপে চারটি খেলা, তার মধ্যে রয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে তাদের অভিযান শুরু করবে। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ কিছু অংশ আরেকবার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী,
1: নমস্কার। আকাশবাণী সে বিশ্ব দর্পণ কে সাথ মে সর ফিরোজি। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कनाडा और ब्रिटेन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की, कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में केवल अस्थायी सीट को बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज किया, इसे विफलता की ओर बढ़ता कदम बताया। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहल पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त ऋण तंत्र के लिए नियम अपनाए। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान आज एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण विषय पर आयोजित इस बैठक में G7 देशों, साझेदार देशों तथा विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी और अन्य नेताओं का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर सामूहिक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि भारत और G7 देश वैश्विक विकास, सतत प्रगति और मानव कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की यात्रा पर आज एविया पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत बेहतर और समृद्ध भविष्य के लिए वैश्विक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिक ब्यौरा प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर कर रहे हमारे संवाददाता से।
2: इस सम्मेलन में भारत की मौजूदगी पूरी तरह रणनीतिक है। कई G7 अर्थव्यवस्थाएं जिस तरह से बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों और सप्लाई चेन की चुनौतियों का सामना कर रही हैं, वे अब भारत को सिर्फ एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में नई दिल्ली ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग महत्वपूर्ण खनिजों और तकनीकी नवाचार के लिए एक बेहद भरोसेमंद और आधारभूत भागीदार के रूप में उभरा है। भारत के दृष्टिकोण से यह G7 शिखर सम्मेलन अपने राष्ट्रीय हितों और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का एक अहम अवसर है। नई दिल्ली का मुख्य जोर व्यापार, नवाचार और मजबूत सप्लाई चेन में गहरे सहयोग पर है, और यह ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया सक्रिय रूप से विश्वसनीय आर्थिक भागीदारों की तलाश कर रही है। विश्व दर्पण के लिए एविया फ्रांस से अंकित कुमार।
1: G7 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा और ब्रिटेन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कल होने वाली मुलाकात को सम्मेलन के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की संभावना है। प्रमुख औद्योगिक देशों के समूह G7 के एविया शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के सहयोगी देशों ने 4 वर्षों से अधिक समय से जारी रूस यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने का प्रयास किया। सम्मेलन के मेजबान और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी अब यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की भी सवेरे की कार्य बैठक में G7 नेताओं के साथ शामिल हुए, लेकिन वार्ता केवल 75 मिनट के लिए ही हुई और निर्धारित समय से पहले ही

0: समाप्त हो गई। यूक्रेन पर यह चर्चा अमेरिका द्वारा ईरान के साथ 3.5 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने संबंधी समझौते की घोषणा के तुरंत बाद हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे राष्ट्रपति जेलेंस्की से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे और अब यूक्रेन के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के अमेरिका पर पड़ने वाले प्रभावों को अपेक्षाकृत कम बताया, लेकिन संघर्ष में हुई बड़ी संख्या में मौतों पर दुख व्यक्त किया। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वो परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो इसके परिणाम स्वरूप भयानक तबाही मच सकती है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर खतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक में उन्होंने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल इस समझौते को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इसराइल की अपनी प्राथमिकताएं हैं और वो लेबनान में बफर जोन में तब तक बना रहेगा जब तक जरूरी होगा। इस बीच अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि मंडल ऐतिहासिक शांति समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर करने के लिए शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में मिलेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वथानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
2: UNSC reform would be grossly inadequate.
3: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
1: भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहल पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र JCM के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। ये पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत और जापान दोनों के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC लक्ष्यों की प्राप्ति में भी योगदान देगा। दक्षिणी जिम्बाब्वे के ट्रायंगल में आज बस और ट्रेन की आपसी टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 25 घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि ये दुर्घटना रेलवे क्रॉसिंग पर हुई जब एक मालगाड़ी बस से टकरा गई। जिम्बाब्वे राष्ट्रीय रेलवे के प्रवक्ता एंड्रयू कनाम्बुरा ने कहा कि बस चालक ने रेलवे क्रॉसिंग पार करने से पहले रुककर आने वाली ट्रेन की जांच नहीं की। उन्होंने कहा कि ये रेलवे सुरक्षा नियमों का उल्लंघन था जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के 400 से अधिक शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे। भारत की पहली और एकमात्र तलवारबाज ओलंपिक खिलाड़ी CA भवानी देवी की अगुवाई में 12 महिला और 12 पुरुष खिलाड़ियों वाली भारतीय टीम प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 3:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के बीच खेले गए मुकाबले भी 1-1 से ड्रॉ रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र

फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कनाडा और ब्रिटेन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। ईरान ने कहा, अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में केवल अस्थायी सीट को बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज किया।

0: का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम आर्स रघु विद द वर्ल्ड न्यूज़।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधा कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए,